0: सय पाँच
1: दिस इज रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज
2: 103.8 मेगाहर्ज प्रेजेंट एवरीडे 10:30 एम टू 12 पीएम
1: इट्स टाइम फॉर कॉलिंग टाइम
2: ओनली ऑन रेडियो ढोरबाराही
3: साउंड बियॉन्ड कूल.

फ्रेशर्स फ्रेशर्स, वीकेंड की पूल पार्टी पे एंट्री चाहिए तो रैगिंग एग्जाम में पास होना होगा। ओ बेचारे फ्रेशर्स, सब चिकन्स की तरह पीले पीले पड़ गए। यू चश्मे फ्रेशर, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, हॉट सीनियर से प्यार हो गया, अब बस उसे पटाना बाकी है। कम ऑन, शो अस हाउ इट्स डन। शू पैंट्स।

0: ये फ्रेशर, यू चॉकलेट फ्रेशर, ऑल दिस जोया चे स्टफ, मतलब क्या है?
1: आंखों को बंद कर जब तुमको देखा, जो तुम हो उससे भी प्यारा देखा।

0: प्रेशर जब चांस मिलता है ऐसे पकड़ लेती हूं. डू यू लाइक मी?
1: एक्चुअली यस.
0: गुड. बिकॉज आई थिंक यू रियली फील क्यूट.

0: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज
1: स्टुडियो टाइम
2: अहिले दिउँसोको 1 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: Yano
1: Kanung Rose Mamhagin
2: Be Mosia Chamamu Chamosia Lumamu Lumosia Mine Mamu
0: Nyangi Limtim Dingi Jot Panalabe Lagiri Nyangila Lolono Prayaski
3: Nari Pina Pina Bulaki
4: कार्यक्रम आदिवासी संसार
0: रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज जरी
1: नाको रसेमु नजाटनी पट्टा लाफा को के रसे की हुसनी है।

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो टाइमचेक अहिले रातिको 9 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापावाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301